सुबह अच्छे से ये अच्छे स्थान के लिए पूछा वे व्यवहार के केंद्र है संकीर्ति तो दक्षिण नवार में का हर इस दिन गुरुवार को शक्तिमत 1948 के राष्ट्रीय वर्षात मास की तिथि सत्य इस मई सन 2036 सुबह के 5:58 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

2026

desires will

जॉर्जिया में उन्होंने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है जो आपके भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान फिजिकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों,

कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास।

45 मिनट सुबह और शाम से लेकर 45 मिनट पर सुनी संगीत चरिता। संगीत चरिता के अंतर्गत सुनी श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनुज जिरोटा। भाग 10। सुबह 7 बजे से भोले विश्व गीत कार्यक्रम 7:30 मिनट पर हम हराएगी प्याज जो बजकर 15 मिनट पर सुनिए गाती रेल। 8:30 पर चित्र लोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 बजे सुबह पिटारा में आज के निर्माण सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व

की पहले के अंतर्गत मिलेगा। संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और इस कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनेगा। कहानी पद्मश्री राहीबाई सोमा कोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनेगा मुझे कुछ।

साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिंदा शाम को।

कार्यक्रम विष्णु दत्त गौड़का और निर्देशन श्रीदेव शर्मा कमल का। आज 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम 9:30 पर आपके फनकार

समय भारत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भारत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भावना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भारत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भोगनों को अपने यज्ञ से उद्धार कर दूंगा। निषाद राज की ललका सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी सूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वान चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजाया था कि बाई ओर से चीख सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भारत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा।

0: सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
1: नमस्कार।
0: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे, हमें जहाँ तक याद आ रहा है एक भजन अगर आप कहें तो उसके बारे में आप बताएं।
1: कौन सा आपको याद आ रहा है?
0: इतना तो खुदा स्वामी प्राण दर्द से निकले,
1: बहुत सुंदर भजन है,
0: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं।

0: जी कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष के।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है।

0: उदाहरण के तौर पर बताइए, भाव पक्ष और कला पक्ष के।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय। जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यही आलाप लेते रहे तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है। ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलकर लोगों से पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
0: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और अब
1: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

सुंदर बहुत सुंदर ऐसी लाजी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।

0: साथी बन जाती है, साथी बन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा,
0: तेरे भाग्य से गूंज

कॉलेज का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले मन्ना दे और साथियों की आवाजें थी बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का गुरु विश्व गीत कार्यक्रम ये

आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म से और मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाज में लिखी गीत आपने सुना कि योगेश ने लिखा था और रॉबिन बनर्जी का संगीत था। वल्ला क्या बात है इस फिल्म का गीत

0: from me of some particular water so that I understand the ones that I have about to see. Thank you very much. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश के सभी नागरिकों के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।

उस रूप से चर्चा की भारत कितनी जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके

परिवर्तन और अवैध

0: siapa yang akan ada di sini?
1: अभी जो मतदान की चादर से दी है मतदान अभियान से पूर्ण तरीका से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार में जो टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान उसमें वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रजाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी

शक्तिशाली राष्ट्र हरी पर्वत नेगी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपने आंतरिक विवाद

प्रज्वलित किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ

युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही है, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास न करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बनी रहती है। यही वो समय होता है जब वो खुद खुश रहने की अपेक्षा करते हैं, उनके जीवन होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है।

सिर्फ अचानक नहीं आ गई बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहाँ ज्ञान और जानकारी तो बहुत है

कर मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुनी जाने, ना समझे जाने की भावना जगी आती। ये वो समय है

também, para mim, que eu sou mulher, que é, né?

का पैसा जो कर्ज का यूज करता है, जो हम खाते हैं, फल

में खर्चा किया जाता है, लेकिन हमको राष्ट्र हित में ही सीखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों

chamber of commerce and industry or as well as partnership.

after that,

ने मुखर्जी ने अभी दोनों और साथियों की पहली बार स्पीकर ने स्पीक को लिखा था और कृष्णा ने स्पीक की धुन बनाई थी। चित्र लोक कार्यक्रम आप सुन रही है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्र लोक कार्यक्रम में अब समय है ब्रेक का, ये लिया जाए बहुत थोड़ा सा ब्रेक।

लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कभी ब्लैक टी अदरक वाली चाय और कभी कुल्हड़ वाली चाय, इन सबकी अलग अलग मिठास है। कुल्हड़ वाली चाय तो हमारे सफर को भी यादगार बना देती है ना। शायद यही वजह है कि चाय हमारे दैनिक जीवन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गई है। बहरहाल अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे हमने स्वतंत्र फिल्म से लिया था, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ थी, सावन कुमार ने इसी को लिखा था, उषा खन्ना ने इसी को।

अच्छा था और रोचक कोहली और साथ ही में इस गीत को संगीत से सुनाया था। इस चीज के बाद आइए एक बहुत छोटा सा गीत फिर से लिया जाए और देखा

0: सदा रहेगी,
1: सदा रहेगी।
0: रोज रात 10 बजे

ce soir, je vais vous donner des informations.

संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसान और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना यही सुंदरता है। हमारे देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। साथ बोले एक दूसरे की भावनाओं को समझे, मन को समझे और मिलकर आगे बढ़े। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान

che ero già iniziato con le mie presentazioni al centro di canalità, mi ricordo che ha. Just as I think about the road to this day, I think about the road to this man without this year, कि हमें इस तरह के विचारों और आपसे विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम, सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और

उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई

इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था। यदि वो धुन

0: विश्वास पर उसको कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता जीत चोपड़ा ही इस तरह के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में

Coral Corrí de Santiago. आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।

स्क्रैच फिल्म ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक ही परमिट से किसी

फिल्म की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म

आज फिल्म के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म के बैनर तले उत्तर प्रदेश की फिल्म मर्दानी में इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के आयशा, इसे भी यशराज फिल्म ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म चिल दिल, इस फिल्म के

करते आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे, लेकिन आप फिल्म की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस दर्शकों को अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन

0: इसमें गैप था, जिसमें जो आप कह रही थी आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हो जब कर जाते। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ

चुका हूँ, आपको बता दें आज सुबह 30 मिनट से आप सभी कार्यक्रम करेगा। सुबह 11:11 बजे होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, और अब से 10 देर में आपके

Sim, é um sonho, meu pai.

या सारा मॉल जो देखने सुनने में सक्षम नहीं है। उन्हें शरीर के अंगों को प्रभावित करने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। बावजूद इसके उन्होंने आईएससी 12वीं में 4 विषयों में 91.75 प्रतिशत अंक हासिल करके रीडर का इस्तेमाल अधिकारी बनना चाहते हैं। दृष्टि को हम सलाम करते हैं और आप हैं हमारी

मिलकर स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और रिसाइकिलिंग वेंडर्स का नेटवर्क बनाया। इन इवेंट के आकार के हिसाब से सजावट,

की बजाय सीधी शासन दवा स्कूल के ग्राहक सामग्री के लिए काम करते हैं, जिस पर 11 साल में 10,000 NGO इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और 25 लाख रुपया जरिए 400 करोड़ रुपए का सामान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया।

चाहता है शंकर राणा अभ्यास लौटे, क्योंकि शान और शंकर महादेवन की आवाज सुनी। जावेद अख्तर की बोल थी, संगीत था शंकर और शान वाल का। मजबूत मन ही सफलता की कुंजी है। मतलब इस बदलते दौर में अब ऐसे शख्स की सकारात्मक सोच की बात करते हैं जो आपको अंदर से कुछ करने को मजबूर करेगी। आप हैं टैक्स कंसल्टेंट, दो दशकों से अपनी SUV को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल दुर्घटना में कुछ साल पहले एक गंभीर घायल व्यक्ति की एम्बुलेंस के इंतजार में मौत को देखकर इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। और सबसे संदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति ने जब भी किसी दुर्घटना पीड़ित को देखा तो वे रुक जाते हैं और बिना किसी इमरजेंसी सर्विस का इंतजार किए अस्पताल पहुंचा देते हैं। और इनके इस काम से कई बार लोगों की जान समय पर मदद मिलने की वजह से

Dana thought would be hot, but it's

这些地方。Another phone number is 0607

उनका ये गीत इतना भी सुंदर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। सावन कुमार और प्रदीप कौशिक ने इस गीत को लिखा था और

ženka vidi, da ne se nanem, da si ti bolesten, ki si lahko tanč, prerazga. आप और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार।

people and

कोयम्बटूर में एक आत्महत्या हमले में हत्या कर दी गई थी। आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों और अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को हम श्रद्धा

अंधाधुंध कतार के खिलाफ उन्होंने लोगों को पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाने का अनोखा और अहिंसक तरीका सिखाया।

पेड़ों को काटने गए तो उस समय विशेष रूप से महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती थी और

साल 2009 और पद्म श्री 1981 से सम्मानित।

Thank you.

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों पर चित्र लेकिन हास्यपूर्ण व्यंग्य लिखे। उनका जन्म 21 मई 1931 मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जन्मदिन पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्य कला से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है यथासंभव, गीत पर सवाल, हल्लियाँ, हम भस्म के भस्म हमारे, दूसरी सतह, राह किनारे गए। उन्हें 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके योगदान को याद करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सरस ज्योति सम्मान किया जाता है। तो आइए बताऊँ, उन्हें याद करते हैं और उनको याद करते हैं।

Jesus, please forgive me.

तो आज है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक आदित्य चोपड़ा का जन्मदिन। फिल्म निर्देशक, निर्माता और पट कथा लेखक वे भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म के अध्यक्ष हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म

लंबे समय तक चलने वाले थे।

अपनी कृपाएं ढूंढना ऐसे कमरों की तरफ भागना, नमकीन और चीजों का सेवन करने की इच्छा इन दिनों पखाना मिली और आदत जो है बन जाती है। क्या इसके बाद भी आप बेचैन महसूस कर रहे हैं? तो अगर घंटे की नींद के बाद भी थकान महसूस होती है और आपका निर्धारण का कारण रात को किसी भांति धक्का होने या नींद न पूरी होने को मान रहे हैं, तो इसके अन्य कारण कमर पटक की होना मान सकते हैं। संकेत है जिससे पता चलता है कि आपके शरीर को बड़े हुए तार

बड़े वीर भगवान ने अपनी ऊर्जा बनी रहे। छोटी छोटी आदतों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पसीने के साथ शरीर में जो सोडियम मैग्नीशियम ऐसे आवश्यक मिनरल्स मिल जाते हैं, इसके लिए किसी पानी से काम नहीं चलेगा। सांस को काला नमक व भुनी घी के साथ में कोशिकाओं में पानी की मात्रा बनाए रखने में नमक मदद करेगा और दही के रूप में प्रोबायोटिक से उसको पानी ठंडा मिलेगा।

से परेशान हो सकते हैं। तो सूर्य में हर समय कृत्रिम रोशनी से भी गर्मी का एहसास होता है और इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। श्रोताओं,

हम गर्मी की चपेट में रहते हैं, आसमान से मानो आग बरस रहे हो। धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बिगाड़ दिया।

स्वास्थ्य के लिए 5 मंत्री सचिव की पूर्ण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बातें हुई।

किसी कारण के तहत समाचार अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से।

लोगों के मैथिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गुलजार के बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहा है 3।
1: तो वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और

आवश्यक है। रात इंदौरी की बोल संगीत है, शंकर एहसान लॉय का।

of it.

के समान

सिस्टम में हमें शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्प्रे भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और उनको खत लिखना, यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानव प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बस कुछ अच्छी खूबसूरत और पुरानी याद हो। साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार, इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहाँ खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है। प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सके तो जरूर बताइए।

कर कर मैं उपस्थित हूँ। मंजू द्विवेदी भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत की जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा और जाहिर सी बात है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख रहे थे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पास तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी

साथी लिख रहे हैं कि अचानक सभी की तरफ से ठीक खबर का स्वागत है। छोटी बल्कि चीजें मेरे दिल को छू कर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बर्फी हवा ने चुपकी से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं, तो इस सख्ती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टिप्स की इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ यहाँ अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। आर डी बर्मन का संगीत है। संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

पिकनिक करना चुका ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के जगत भारती केंद्र के अतन के सुनो आठ मेगा हॉट पर। कुछ प्रोग्राम में आज सुनेंगे कार्यक्रम समाचार आकाशवाणी से आपकी तरफ।

contente de aussi.

आकाशवाणी के राजीव कुंड से प्रथम के सुनला आज के प्रभाव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विद्यार्थी के लिए जोड़ते हैं विद्यार्थी के साथ से सेवा के आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुरू हो चुका है वो आप हमें बता सकते हैं लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है धन्यवाद जी बिल्कुल आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं हमें पता चलता है एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हो आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो बिल्कुल कम हो जाता है एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं रात भर आकाश में तारे गिनना यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना यही है पागल प्रेम की कहानी जी धन्यवाद आपका चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज शंकर जय किशन का संगीत आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है गीतकार का नाम

संगीत है, कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक? कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुँची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, तो जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना अनिल विश्वास।

इंसानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है। ऐसे में जहाँ कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है इसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक तो ये साफ सुथरी चीज़ है कि जिसके प्रेम में पड़ जाता है ना तब दिन दुनिया और इस जहाँ और कोई ख्याल नहीं जाता। बस एक मैं और एक वो उसे सामान्य जगह बैठ कर जब खत लिखने लग जाऊँ तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूँ। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात

भी हल्के से चमक रही थी। दूध कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी के सौंधी सौंधे पशु वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद उमर कैद इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत जी हाँ यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलशन बाबरा के बोल में संगीत किसका है क्या बताइए।

होती है, घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं, पौधों से वाष्पोत्सर्जन हवा में नमी बढ़ा कर प्रकृति कूलिंग करते हैं, मिट्टी और हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाहट से मानसिक सुकून मिलता है और इस तरह से इन्होंने

कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिखते हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपकी गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिखते हैं कि आज आपने तो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं, सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडा खाना मिल गई। एक साथी लिखते हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नाचते हुए देख कर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिखते हैं सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है यमन कुमार और लता जी की आवाज हजरत जयपुरी के बीच शंकर जयपुरी का संगीत देव आनंद और ऊषा किरण पर सुनवाया।

धन्यवाद देते हैं और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है और मुझे कहने की मंजूरी है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।

questions and stuff, but you need

छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट भी बड़ी प्यारी लगती है। उस में प्यार स्नेह अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनी

के भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह

बेशक अचानक नहीं आ गई बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है जहाँ ज्ञान और जानकारी तो बहुत है।

प्रेरित होती है और ज्यादातर माता पिता इन तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकाल कर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज होना होगा।

करके सामने विविधा केन बोली बनी पश्चिम मुंबई प्रवेश बिल्कुल मुफ्त आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। इस संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी

मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भोजपुर के इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के द्वीप पोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

0: यह स्मारक कर्ज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की दुप्तता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में गिर गया था, तब भारत ने यूनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी

on the area www.rn और हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध है। दो अधिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध पीड़ितों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन।

0: बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। सेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इनकी बात कही।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने

शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूप लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला

0: joy feeling also starts from our body. What's the same on it?
1: पूर्वी असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली, उसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली।

कहते हैं राजकीय उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।

से टीवी के अंक में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति के लिए पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू के

auditorio.

आशा भोसले और इजी प्रदर्शन की आवाज़ में मशहूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ।

sin.

0: सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। मैं हूँ आरती अंकल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती द्वार सबका नमस्कार। और कहती हूँ, पूछ रही हूँ इस गर्मी में पता सा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में फिर दीदी देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे छूटा नहीं होगा सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने के लिए।
1: इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
0: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करें क्योंकि आंखों पर भी जो
1: और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
0: और घरेलू उपाय के अलावा कुछ खास बातें जैसे घर से निकलते वक्त घर से कोई कपड़ा लेना, चादर लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जाते हैं इसके बारे में जरूर हमारे साथी लेकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है,
1: फोबिया पर हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है जैसे कि हमें
0: हर एक को होता है।
1: अभी हम

कहानी पर भी खुशी में राही बाई सुमा पोखरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी सीड मदर कही जाती है जी उनके बारे में और बहुत खास दिन है भाई चाय दिवस चाय की छुट्टियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता और जब भी हम देश ऐसा यही है भारत जहाँ पे इतनी 50 एसोसिएट के घर में इतना तापमान चल रहा है उसके बाद भी उनको क्या चाहिए चाय चाय चाहिए चाय के बिना गुजारा नहीं है चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय लाए दो लोग बैठे तो चाय होगी अगर आप अकेले ही बैठे हैं तो अपना साथ में चाय का प्याला है तो बस और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो हर जगह चाय की चीज कह रहे हैं वो अपना कलम बांध लेते हैं तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम चाय के बारे में आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की पहली की जाती है और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए संसाधनों को ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था इसकी घोषणा की थी और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके। बिल्कुल ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं परंपराओं कलाओं जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है और दिन

0: कहा, कुछ हमने कहा, और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है। और आगे बात को हम पढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपले की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोम्भाल्य की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी सी दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडार है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के मूल रूप से उनके पांच भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सके। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की थी किसान के दिन के साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय बच्चेदारी उन्होंने हासिल कर ली।
1: और जिस तरह से बताया कि मैं 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपने बीज बैंक के दरवाजे पर खोलती हैं जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है,
1: वो गौरैया होती है। तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला सरता काय हर्ष अनि काय नहीं मनसाला एकता ज्ञान असुन पर्ण प्याला हे समझते रहे। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते दाना चुगते और अनाज में से रुचि दिखाते, लेकिन 4 साल को कैसा हुआ कि वाकई अद्भुत था, पंछियों के झुंड और पूरी फसल सेट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी, जिन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी बड़ी मन जाएगी
1: बिल्कुल। और वो याद करते थे कि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन से हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जाए, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या देसी बीजों से उगाई गई है। तो लग सकते कि हमारा जो हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में रात में संरक्षित वॉल या घोगा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला

उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझी जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहाँ से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती है न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर है और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती है क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देशी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे। बिल्कुल, अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी फसलों के प्रोत्साहन देती है। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए वायु परिसर बिरयानी संवर्धन इस नाम से स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के बाद ये उन्हें बागेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस स्तर पर उन्होंने वहाँ बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हाइसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों का और फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है। और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यार।

करके सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नदियां तो निहार रही हैं कि वो काले बालू जैसा टुकड़ा है जो बरस जाए, हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी।

0: में उनका सरदर्द होने लगता है और शायद दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक आरती हमारे सुनने वाले भी इस बात से जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है और हिंदू कालियों की चाय पीने की आदत है ना,
1: अगर वो बढ़ जाए तो अगर आप किसी घर गए तो भी हाँ, अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया आपको खाने को, सब कुछ मिला लेकिन आप घर के उसमें चाय नहीं चाहते, बस चाय नहीं है तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये किल्लत होती है लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय और अपना एक खास दिन भी आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मई की आज के दिन की, चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न

0: जाते हैं, फिर बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर जो एक दिन में जिसके तरफ से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती है,
1: बहुत ज़्यादा।
0: और पौराणिक कथाएँ है ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन हाउ ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से पत्तियाँ उड़कर उनसे उबलते हुए पानी में गिर गई, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया और तब से बस चाय का शौक याद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और दरअसल जी ऐसा है ना कि एक पेरेंट से अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिलेंगे ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना,
1: वो चाय की चुस्कियाँ चलती रहती हैं। चलो एक बार और हो जाए, देखिए चाय और हो जाए, तो एक पहली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहट से सुधर जाता है,
0: बिल्कुल सही।
1: और एक पहली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें सारी परेशानियाँ जितनी समस्याएं लड़ाई झगड़े सब निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक पहली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या मिल जाए अगर बात करते करते तो हमारी जो बातें और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है बराबर।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की तैयारी हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं, और जब दिन भर की थकान इसके बाद एक चाय की तैयारी मिल जाती है ना, तो उसके घूट में जो सुकून मिलता है कि वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और धीमे धीमे सुगंध से हम सबका मन दुखाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से सोच कहते हैं कि चाय बनाने और फिर फल पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून भी

थोड़ी बहुत गपशप ना करे, बातें ना करे,

0: महत्वपूर्ण है भी। और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदल रहे होंगे आपसे, तो हम आपको बता देते हैं कि तो हम भारत कहाँ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य के माध्यम से अधिकृत तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। और अच्छी बात तो ये हुई आरती, विश्व स्तर से मनाया जाता है। सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गमन किए थे।
0: और चाय का उत्पादन यूँ तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय की उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे उत्पादन की वो भारत में ही होती हो जाती है। और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देशों में होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर है तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से उपलब्ध हो चुकी है। अब अगर हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर करें, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर स्वादिष्ट मिलती है और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह पीती है। और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि अंतराल का समय हो जाए।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाहे ऐसी भी चीज कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता से अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं पीते रहेंगे। सभी पहली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो समंदर से कैसे करें इनकार। इस बात का गुजराती मुहावरा चाय चाय बासी बीजा पीला वगड़ाना वगड़ाना वाह
1: क्या बात है।
0: और ये तो बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगटी कहते हैं, कुछ मसाला भी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो

0: चाय पीता है और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिल जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप इलायची वाली चाय से धर्म फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे अपने जो चीजें हैं कि भाई गाड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेते
1: चाय की गाड़ी भी करवा ली है,
0: सब चाय से मिल जाएंगे थे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। चाय इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसे लिखा गया है, सुनो तुम हो बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है। लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है। देखो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का मतलब एक विचार है, उनका एक बेहतरीन शेर है कि हर पड़ी शाम की उदास फजा इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की इस प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है।

मतलब चाय का प्याला और हमारे साथी क्या लिखे हुए हैं, पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है, हर गुड ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है। और हमारे दोस्तों को लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेजेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद जो चाय है भयंकर गर्मी में वो भेजी है मैंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है। हमारे छोटा अभी लिखते हैं हर घर द्वार हरी सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेही नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना बनता है, मीठी मीठी बातें शरारते हो जाते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ वृद्ध

0: श्रोता जी लेते हैं, शायद सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। इस सुकून गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है। हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की। देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं, लेकिन चाय विषय भी ऐसा है कि चाय छोड़ने तक हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि माइक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं?
1: जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता तो
0: हाँ,
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ
1: है ना। जीव फोबिया होता है, किसी को भूतों का डर हो सकता है, तो बहुत से सारी फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया कुत्तों का डर होता है, ग्लासोफोबिया सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने के डर। कई बार लोगों को ना कि नहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारी कोई परिचित, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना खून से लोग देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल।
0: और एक होता है ट्राइकोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है इसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंग्जाइटी होती है आपको वो होता है। और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी इस तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें जो होता है वो खुली जगहों पर, यदि हम जैसे अगर उसमें हमारा फोबिया आया था तो भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ से जाने से। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

से पुराने बुरे अनुभव तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना। बिल्कुल एक बार श्रोता जी लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक कहीं तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति और प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है। उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है, बहुत सारे लोग सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत होता है। सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया की, मतलब मुझे भी कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, तो उसमें लगे। हाँ बिल्कुल, हमको हर जगह साफ सुथरा बन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर

से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था। एक बार छोटा जी लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है। ये जानते हैं कि सब कपोल करते थे, फिर भी अंधेरा होती है, सारी भूत प्रेत की कहानियाँ या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पते विरा भी करती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी इनको ये जैसे लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं रहता है, रात होते ही अंधेरा होते लगती है सब डर। तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह पर कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो कहीं की आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ एक्सेसिव बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सन ग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए। और बाकी आगे बढ़ेंगे

0: किसी वगैरह में अगर बैठे हैं या बहुत ज्यादा, तो वहाँ आके जल्दी सीखती है जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें, घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ करने से जरूर होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनें।
0: बिल्कुल, और अपनी सुन ले जाना।

0: integrity. So now हम बोल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से फिर से विविध भारती केंद्र की आइए सुनते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय केंद्र से कार्यक्रम की शुरुआत।
1: अच्छा तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
2: हाँ जी यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
1: अच्छा तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
2: जी मैडम मैं विविध भारती सुन रहा हूँ 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
1: अच्छा कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
2: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के कानकार हो गए, और ये सखी शैली में खास कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सखाव की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, और बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो पता जाता है मैडम।
1: अच्छा अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
2: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
1: अच्छा चावल की तैयारियाँ हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
2: अभी से बाजरा का फसल लगाएंगे मैडम, एक डेढ़ महीने बाद बाजरा बोएंगे।
1: अच्छा तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी मैडम आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और उसमें गाने के बोला धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूँगा मैडम मैं।
1: चलिए आपके रेडियो स्टेशन आ रहा है।

0: से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरेस्ट आर्यन प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में तो बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियाँ नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आपकी? और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए
1: जी। आपकी बात हम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा चलेगा बच्चे बच्चे?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ाव बचपन से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं। रेडियो की तरफ से झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो पति सैलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, कि इसमें आँख में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई के लिए रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं, क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जनजना में फिर तेरी कहानी आ गई, काले बोल ने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके मेरे खुदा मुझे
0: और अब सुनवाते हैं

0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है, तो आजकल तो पक्के जी नहीं, मतलब पक्का नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाएगा दो पक्के जाएंगे वो भी कम पड़ जाएंगे।
0: मैं
1: दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है, इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो को हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, जोरसिद बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आपको बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग होती है मैम अपने अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है की हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ लागी है, वो

0: में शादी वगैरह में।
1: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है, जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
0: बिल्कुल मैम,
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसम वादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
1: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आप इस देश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का गीत।

0: क्या करती हैं आप दीदी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल है?
1: अच्छा हाल, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो शायरी कर देते हैं आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है। और बहुत हमारे
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ
1: रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गली बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है।

0: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रखो होता है।
1: अच्छा, और क्या करती हैं
0: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हम सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जब मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
1: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
0: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर और घर पे भी रहता है,
1: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?

0: पाकिस्तान से बोल रहा हूँ।
1: नरसिम गौर जी, आप तो विविध भारती के बहुत प्रवेश होता है
0: जी। मेहरबानी आप लोगों की।
1: जी मैं आपको, जो आपका नाम है वो बहुत पुराना, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरसिम गौर जी, क्या समाचार है आपके शहर के?
0: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं
1: जी। अपना ख्याल कैसे रखते हैं आपके?
0: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं, पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। और हमको अभ्यास भी है, राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है।
1: तो

0: सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बसता है तो सभी सुनते हैं, लेकिन सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 40 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें से।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है
0: जी।
1: हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुना

0: कैसे हो आप?
1: हाँ, मैं अच्छी हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं?
0: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
1: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
1: क्या करते हैं?
0: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, थोड़ी साड़ी बनाने का काम है हमारा।
1: अच्छा, तो ये तो बड़ी चीज है ना, कुछ समृद्ध कला।
0: हाँ, मतलब जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई कुशियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। अगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
1: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियाँ होती हैं या जो सलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत

0: बिल्कुल नहीं आती, यही साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, इसमें इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है, मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं, कॉटन में कॉटन आता है कपड़ा वो रेड कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
1: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
0: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि सादर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
0: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
1: तो इस काम के साथ साथ सदर बहुत ही आप सुनते रहते हैं?
0: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, लेडीज पार्टी में आपको एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और अब आप बताइए अपनी पसंद फिल्म?
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका है लता मंगेशकर की आवाज में है ये मुलाकात, एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आप

0: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंदर समेट
1: रहा है। परीक्षा पर

0: अच्छा तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय।
1: आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर है। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, चन्नेवाला बाग है, घूमने लायक जगह है जी। बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतर का है लक्ष्मण। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो एक कार्यक्रम होता है बहुत अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: बात बताइए जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परम्परा है सांझा चूल्हा की,
1: हाँ जी सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है वहाँ की परंपरा जो है और खान पान बड़ा है, तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: बड़े बड़े रेट भी होते थे ना, जी पनाका गीत माला आता था सलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम में

0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए, क्या हाल चाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हाल चाल है। मैम, आज बहुत दिनों में कॉल लगी। मैम, बहुत खुशी हो रही है। मैम जी, मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ। मैम,
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या आप?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में। मैम,
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ। मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। मैम, वहाँ मैं ये तो मैम जो है लोड कराती है कंपनी। मैम, जो है बढ़िया से बनती है। मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत ही और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है। मैम, जी मैम, कोई ये जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को सभी बच्चों को सब पिलाना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में। ये कहना चाहता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक के मन से बच्चे रहे। मैम, चीनी का मान पिए और कंपनी का मान पिए, अच्छा मान पिए। मैम, उससे कुछ नहीं होता। मैम, सॉफ्ट ड्रिंक का मान पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा,
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ। मैम, मेरा बचपन का शौक रहा रेडियो सुनना। मैम, और रेडियो बात की तो बहुत समय सुनता हूँ। मैम, इससे पहले एक प्रोग्राम आता था, ऐसे निश्चित भाने डी वी एस के तरह। मैम,

0: साल बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं श्री श्री रामू साबे ग्राम सामना पर तलुका कागल किला कोल्लापुर से बात कर रहा हूँ। सही गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, लेकिन धाती के स्तर को काटा सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसे रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल

0: शिवाचे सासना काठी दुले, सासना काठी दुले, जो शिवाची सासना काठी दुले, सासना काठी दुले, जो शिवाची सासना काठी दुले।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये और भी सुंदर लगता होगा, है ना?
0: लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, अरिजित है, देव कोहली, संगीतकार का नाम है

हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-02-88। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फोन नंबर आप नोट करें 400024662। मुंबई का एसटीडी कोड है 0022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-02-88। मुंबई का एसटीडी कोड 0022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरले करता और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता राघवेंद्र निधि। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ये सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।

0: definitely. You don't have to change your food. Yeah, definitely. Then take your cover of happy candy. I'm not going to take this in the last thing I have to say. I use those things and I just have to get out here so that's what I can do. I'm proud of you.
1: Sami, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते सात जन्मों के साथ ही जैसे ही लगता है कभी कभी हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ हैं।

कोई बड़े सपने न देवांगी न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में

प्यार करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें तो कहा था

थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी खुशी, और हम एक आगे की वो आलिंगन एक स्पर्श देता है मेरे मन को। उसके बालों की खामोशी मेरी टूटन को जोर देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण।

दोस्तों को लेकर आए।

की आवाज हुई थी। तब सुन रहे थे बाबू का फिल्म से प्रीतम का संगीत था और पुराने नए पुराने के बाकी नवयाव सुनेंगे समाचारों के बाद।

अपने पति से शिकायत कर रही है। पति की कमजोरी यही है कि वो शराब अधिक पीता है, इसलिए पत्नी उसे पागल हो जाते हो। ड्यूटी जाने की बात होती है पर आप गौरव की छुट्टी मिलते हैं। शराब, मुर्गा, जुआ,

लाइए आशीर्वाद आयोडाइड।

जब हम देखे हाथ से लेकर

Bebê da Pacífica, nosso mundo da vida.

देख रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब तो इंटर को पढ़ाई अच्छी है, उससे तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित एक दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन में सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने

ऊपर एक बार वाले साहब का मदद करेंगे।

0: ग्राउंड से भाग लेंगे हर जगह हम लोगों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके लिए सभी लोग लगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर

0: कोई भी ना छूटे, आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
1: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य

जाना ये हम सबों के लिए गौरव का क्षण है। जब मेघा कोई गरीब और कानून को पहचान से नहीं होता, आज भी वैसे मेघा हर जगह पड़ती है। इसको सिर्फ आवश्यकता है तो समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेघा को ढूंढ मिलता है।

अपने कैलाश से की आवाज में नीचे कारवा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में

साल पर्सनल रेकर्ड जीत में अजनबी फिल्म का नाम था आनंद बख्शी ने लिखा था और आर डी बर्मन की फिल्म जयमाला में आगे ये गीत किशोर कुमार की आवाज सागर तंत्री जावेद कल तक ने इसे लिखा और आर डी बर्मन

ज्ञापन भी याद आ रहा है। जी हाँ जगन्नाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और यह मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।

wir standen mit dem Schild wie Erdmüdigkeit. आनंद बख्श ने जो लिखा है शुभ धर्म का सही आप सुन रहे हैं भगत भारती से प्रोग्राम जयमाला।

से एक मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ttcr.gov

0: विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ आने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद सीधे तो म्यूजिक की तरफ बढ़े नहीं होंगे। तो जैसे आमतौर पर हमारे अभिभावक हमारे माता पिता घर में ये उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री कर ली भाई, अब कोई नौकरी करो या कोई अपना व्यवसाय करो, है ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो आपके सामने आपके लिए ही ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा, आपसे भी उम्मीद की जा रही होगी।
1: उस उम्र में एक्चुअली हुआ था, इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में स्टेटमेंट होती है
0: जी,
1: तो

0: जो हो सके अपनी लाइफ में।
1: हाँ मतलब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम तुम्हारा डिसीजन खुद लो।
0: अच्छा
1: ताकि अगर बाद में रिग्रेट हो तो तुम्हारी गलती हो तुम
0: किसी और
1: किसी और।
0: अच्छा
1: कि तो तुम सोच लो क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट तो होगी है।
0: सॉरी जी
1: प्रोफेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उनको भी बहुत दिक्कत होता। तो उन्होंने मुझे ऐसी बोला था कि हमें कुछ पसंद है तो हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल
0: आप अपने निर्णय से पक्के पूरी तरह से
1: वो थोड़ा होता है वो इसमें एक स्टुपिडिटी होती है कि कर लूंगा तो फिर आप घुस जाते हो उसमें और फिर
0: नहीं। लेकिन ये एक मजबूत जो है निर्णय ले पाना उस उम्र में भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ मतलब वो एक्चुअली लोगों को डिफिकल्ट होगा वो मेरे लिए निर्णय नहीं था। वो निर्णय से सोचने के लिए करना है इतना कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचा नहीं था सब। तो वो
0: उस उम्र में इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं अट्रैक्ट करते हैं कि किसी एक निर्णय से टिके रहना भी बड़ा मुश्किल है।
1: हाँ वो है लेकिन वो हो गया मतलब संभाव फिर मैं वो सर्कल नहीं घुस गया। फिर उसके बाद म्यूजिशियन की सारी सराउंड हो तो आपको स्ट्रगल दिखाई आपको दिखता है कि पूरी इंडस्ट्री है कि नहीं पूरी इंडस्ट्री रहती है ना। तो जो आप काम करने लगते हो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हो तो आपको लाइवलीहुड हो रहा है। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर पूरी इंडस्ट्री होती है जो परफेक्ट कर रही है और बहुत काम है तो उसमें ऐसा नहीं कि नहीं है आपको सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू डू द वर्क। तो ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है
0: आप काम बहुत है टास्क बहुत है करने वाले चाहिए
1: आपको विलिंगनेस भी होना चाहिए आप सीखते रहना पड़ता है आपने एक डिग्री ली है तो आपको क्योंकि वो फ्यूचर वर्क है तो आपको अपने इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। तो एक वो चीज़ है और एक लक का भी है मतलब मुझको ऐसा भी होता है कि आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाती है फिर आप उसमें सेट हो जाते हो तो फिर वो वहाँ पे उसी तरह से हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी कि उसके बाद स्टूडियो भी यहाँ पे वो स्टूडियो के ओनर भी मतलब काफ़ी मतलब मिली थे वो जैसे उन्होंने स्कूल के बाद ही स्टूडियो कर दिया ट्वेल्थ के बाद तो यू आर द कंपोजर उनके साथ सीखा काफ़ी तो उसका मज़ा आ रहा था। तो फिर
0: पर ये उम्र होती है जब बहुत से हमारे दोस्त होते हैं वो दोस्त भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं ना मगर आपको संगत मिली उन साउंड
1: रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ मेरे दोस्त भी तो ना कि थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ मेरे दोस्त भी तो बहुत लिमिटेड है और मोस्टली मेरे जो दोस्त है वो भी बहुत अलग अलग फील्ड में कोई लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव भी थे।
0: कोई खास दोस्त जिसको बारे में आप बता

0: क्या क्या पसंद है आपको, आपके शौक क्या क्या है?
1: मुझे घूमना पसंद है, ट्रैक करना पसंद है।
0: अरे वाह,
1: बाकी आई थिंक बचपन में मैं जो कॉलोनी में रहता था वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स, स्विमिंग,

0: ठीक करके फिर उसको आगे बढ़ेगा।
1: तो उसकी एक बहुत मूवमेंट बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है।
0: अच्छा,
1: तो वो देखते कि उसका शौक आ गया तो फिर वो एक बहुत बड़ा शौक।
0: कई बार हमारे शौक हमारे काम को प्रेरित करते हैं, उनमें कुछ नयापन लाते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? जैसे हमारे एक मित्र है, वो बेसिकली गिटारिस्ट है मगर वो पेंटिंग भी करते हैं।
1: Right.
0: तो गिटार बजाते बजाते उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, तो उसके अनुसार उनका पेंटिंग नया पेंटिंग बन जाता है।

0: नेचर से भी आपको
1: जब अकेले होते हैं कुछ होता है कोई नहीं होता है कुछ सोच नहीं होते हो तो उसमें से जो आपके करते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं फिर वापस आके जब आप ट्राई करते हो
0: बहुत खूब। अरे जी क्लासिकल म्यूजिक में कई बार सुगम संगीत की झलक भी सुनने को मिलती है बंदिश में बजाई जाती है तो ऐसा कोई टुकड़ा कोई छोटा सा पीस जो गजल की तरह हो या किसी सुगम संगीत की तरह हो क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें?

भी आप यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो और यूँ ही धुने सुनाते रहो, मगर किसी भी आयोजन के समय की अपनी सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से आप जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसके लिए ढेर की शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी।

पाटेकर की बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। अगले सप्ताह हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता।

0: छोटी ही बातें और मजेदार किस्से
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, बदला को इंग्लिश कर सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।

0: 不是吧，你咋？爸爸，爸爸，阿姨，阿姨，大姐，大姐，阿姨，你怎么就背过去？
1: 啊，我就是说你不生个大病。啊，再一把，我就是这些神马不是呢，你妈急的。
0: बोलिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत

0: फिर आप
1: कहती ना आप
0: और फिर इसी शहर का पदना का समाज सेवक बने।
1: समाज सेवक यानी
0: कहिएगा यही मेरे दांत खाने से और सिखाने से और अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक अपने लिए पार्टी एकता सेवक।
1: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है, जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी हैं।
0: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
1: डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए क्या क्या लेना पसंद करेंगे?

0: जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है, जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी हैं।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: डॉक्टर को मारिए गोली, पहले आप ये फरमाइए क्या क्या लेना पसंद करेंगे। मेरा मतलब है आप क्या पिएंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, चिकनी या दूध?
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा तो आप क्या नोश
1: फरमाएंगे?
0: वेरी गुड, मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमू?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है, मैं ये सब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं या अपने रिश्तेदार जी से। यहाँ तो जो भी आता है किसी न किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया।
1: लगता है आप
0: जी मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे
1: जी?
0: बरेली, रांची
1: जी।
0: तो फिर मैंने आपको आप में देखा होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है? मैं तो यहाँ की बात कर रहा था।
1: मैं तो पहली बार आया हूँ। बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने से। देखने चला आया?
0: अच्छा ठीक चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: क्या मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार, मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ। पागल खाना, देखिए यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजीब साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर रहे हैं।
1: अच्छा तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अब पहले आप झुकिए।
1: मगर क्यों झुकिए सर? हमारा सेवक टूट सकता है और झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीस करके खड़े हो जाइए।
1: अब आप टाइम ही क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कर रहे हैं?
1: मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ?
0: अमिता आपका कोई मजाक कर नहीं पाए। अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अब आप बैठ
1: जाइए। बैठने का क्या मिलेगा? अगर तुम कहते हो तो लो मैं बैठा जाता हूँ। आप भी खाओ।
0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया?
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, इन साधन यहाँ से फाटक की तरह भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार जब पागल ने चौकीदार से नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते
0: क्या देखता हूँ कि वो पागल पागल खाने के बाहर चौकी पीछे चौकी पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। फिर क्या हुआ? किसी ने जाकर पागल आए
1: डॉक्टर साहब, एक पागल पागल खाने से चौकी पीछे भाग जाए। डॉक्टर साहब चौकी पीछे भाग।
2: तुमने उसे भागते हुए देखा?
1: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
2: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
1: साहब मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था। वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार।
0: थैंक यू थैंक यू।
1: हाँ तो आपने ये तो बताया।

0: ये भूल गया और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहाँ से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा,
0: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अमां क्या कह रहे हैं आप?
0: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
1: सुना ये?
0: हाँ तो मैं कह क्या रहा था,
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब हम लोग घूमते गोमती पहुँच गए।
1: अच्छा,
0: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूँगा, ठंड का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो खूब सारा नदी गया। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियाँ लगा रहा है। तब मैंने कहा खूब सारा और उसे पानी से बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया, फिर उसका तेज दबाया, फिर उल्टा किया, फिर तेज दबाई, फिर उल्टा किया, फिर आखिर में उसका पैर दबा दिया। और जब पानी से पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहाँ आ गया। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे
2: राम भरोसे जी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली।
1: डॉक्टर साहब वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था, ये क्या हुआ?
2: समझदार नहीं था, फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?

0: हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। वैसे मेरा नंबर 137 है। नंबर 137। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है तो तुम मेरे कमरे में मत आया करो। तुम फिर आ गए।
1: दादा मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
0: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप?
1: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
0: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
1: नहीं नहीं इनकी नाक मौन की है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, सब तो एक प्रॉब्लम है, आप मेरी नाक काटेंगे कैसी? अच्छा तो आप सब इंतजाम करके आए हैं? आप
1: पड़
0: हाँ तो राम भरोसे तुम मेरी नाक काटो। पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनकी बात भी तो करनी है ना।
1: आप चिंता ना करें, मैं एक घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
0: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, आप अपनी तरफ से।

इसमें गौर निर्देशक जयदेव शर्मा कमल आवाज का हवा महल कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दर्शन से डेवलप सुन रहे थे। रोमी और तनिष्क दास की आवाजों में नीरज राजावत ने लिखा था और म्यूजिक तनिष्क दास की था।

सुन रहे थे गुलजार ने से लिखा था ए आर रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक की बाकी दिनों में कुछ पलों में

यही शाहिद वाले और अजीत कौर की आवाज में शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने लिखा।

72 hours.

आप तो निकाल बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु पुडुचेरी कर्नाटक और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उस हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

के तहत ये गीत अभी आपके लिए घर पर से किशोर कुमार की आवाज है। गुलजार ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन का संगीत था। कुछ रोशनी ख्वाब,

हार के कारण

गुजरे दौर की आवाजें दिलों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आज की सुबह को बनाए खास। भूले बिखरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपके लिए

अपने विधवा सुंदर से घुराना पहुंचे। जय देव का संगीत था और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है। आपने आज का संगीत का सफर तय किया।

की बनाओ जी गाना। कुमार साहब कह रहे थे कयास सर जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज़ संगीतकार पूरे हिंदुस्तान भर से आवाज़ें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। तो जैसे नाई के साथ एक आवाज़ है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, तो आवाज़ तो यही है जो चाहिए कुमार साहब को, बेमिसाल गा गए आई जंजीर की झंकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिजम है जंजीरों का

चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

सुस्त करते रहे यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म

का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्म बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही फिल्म बनाई।

शायद गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, न ही उम्र का मोहताज होता है। प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर द्वारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में मदन मोहन दोनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुने जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थी, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और

0: को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस डायरेक्टर के लिए फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में हर काम करते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है और जिसे रिसर्च डेवलपमेंट का जिसे रखते हुए बातों को क्या किया कौन सी और क्या बोले खबर

मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लगाकर किया जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के करीब। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी। चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो,

स्क्रैच फिल्म ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म

फिल्म की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित

चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म

पहले यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। साल 2015 में सुमित कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा, इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस

चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फ्रेंड, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन किया और सुल्तान की वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई

做不了板，就阿里或者说，如何看上班人啊，刚确定这手机。

0: लेकिन कह रहे थे तो ऊंची की दीवार से
1: अभिनेत्री वही जानते हैं माँ
0: और बीच में गैप निचले जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं जब कर जाते हैं मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई मैं भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी चाहिए ये कैसे हो सकता है बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया

रात में बाहें खोल रखी है, मेरी लज्जों में तेरी ये नमी खोल रखी है, तेरी झलक को तरसती है ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख।

की सबसे बड़ी पल छूट गया है। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में

आती है मेरी शम। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा

0: भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल छींटा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की खबरें

的什么的孩子，你看。

0: चाचा कि मेरे सामने कुमार खूब मार, आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: देश विदेश की बात

ada pembahasan.